खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69।

0: बबुर लोहे वेपरिया कुमारी समेत गुम थियल बारन की बाजिया के लिए एहतजाज जो सिलसिलो जारी। रिहा एक्शन कमेटी के सदे बबुर लोहे बाईपास से कायम एहतजाजी कैंप जारी। इंतजामिया के वफद जो एहतजाज खत्म करने लाए कैंप से वेठलन से गालू मुजाहरीन जो एहतजाज खत्म करण का इनकार। बारन के बाजियाब कराने जो मुतालबो।
1: रोहड़िया में हथियारबंदन पुराने तकरार ता होटल अंदर फायरिंग करे बिन जणन के कतल कर छो। वाक्यो छुहारा मंडी वाले इलाके में लखण ए बिरानी बिरादरी के बिंदुन में हंदड़ पुराने तकरार ता पेश आयो। हथियारबंद के हमले में अब्दुल हफीज मीराणी ए मनथार मीराणी मकसूदन के वारसन चवण आए तो बिन्हीं धुरन विच में पुराणो तकरार हलंदड़ हो जैजा अग भी केतरा ही भेरा फैसला थी चुका है।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
4: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-383-569 0300-338-5569।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 10:15 a.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Aashiq Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Jupur Atmat. Aimba Akhtiar 3S Dealer. Aashiq Honda Motors Mehrapur. Jite Nai Motorcycle Ji Sale. कंपनी अजे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-96-8051।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: रابطे लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਅਮੀ ਕਤਰ ਮਿਟ ਚਾਕਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਹੋ ਗਾਰਨ ਜੋ ਬਿਓ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੁੱਲਾ ਖਮਨਾਈ ਚਾਹੀ ਰਸਮਨ ਬਾਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐ ਕਤਰ ਪਾਰਾਂ ਤਸਦੀਕ ਬਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਚਵਾਇਤ ਕਤਰੀ ਸਾਲ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਨ ਸਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੁਲਾਕਾਤੂ ਕਯੂੰ ਆਇਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਮੇ ਥਿਲ ਗਾਲਹਿਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮਫਾਮਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ ਨਾਮੇ ਤੇ ਅਕਬਰਾਈ ਕੀਆ ਹੈ ਬਿਨੀ ਮੁਲਕਨ ਵਿਚ ਮੇ ਗਾਲਹਿਨ ਜੋ ਬਿਓ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੁੱਲਾ ਖਮਨਾਈ ਜੋ ਆਖਰੀ ਰਸਮਨ ਬਾਤ ਥੀਂਦੋ ਕਤਰੀ ਵੱਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮੂਜਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਗਾਲਹਿਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬੇ ਇਤਫਾਕ ਕਯੂੰ ਆਹੇ ਅਤੁੱਲਾ ਖਮਨਾਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਬਾਅਦ ॿिन्ही मुल्कनि में ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू थी वेंदो।
1: सदर ट्रंप वाज़े मक़सद बिना ईरान ख़िलाफ़ ॿीहर कार्रवाई जे हक़ में नाहे। ईरान जे एटमी प्रोग्राम जी बहाली वाशिंगटन खे हुकूमत अमली तब्दील करण ते मजबूर करे सघे थी। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त दोहा में थींदड़ ॻाल्हियूं सुठे अंदाज़ में अॻिते वधी रहियूं आहिनि। अमेरिका ॻाल्हियूं नेक नियतीअ सां करे रहियो आहे।
0: ईरान जो अमरीका इसराइली बमबारी सां मुतासिर एटमी मागन ताईं आलमी तवनाई एजेंसी खे रसाई ॾियण खां इनकार करे छॾियो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाज चयो आहे त पार्लियामेंट ऐं सिक्योरिटी काउंसिल पारां मंज़ूरी ॾिनल मागन ताईं आलमी तवनाई एजेंसी खे रसाई ॾिनी वेंदी। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़म ग़रीब आबादी चयो आहे त अपना हुरमज़ सेंड काम ॾिन पर ईरान जे कंट्रोल में आहे। फ़ौजी इजलास अपना हुरमज़ जे सिक्योरिटी जो ज़ामिन नथो थी सघे।
1: यूक्रेन जी गादी वारे शहर क्यू ते रूस जो मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमिलो, 10 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। परॾेही मीडिया मौजूद क्यू में 12 खां वधीक धमाकनि जा आवाज़ ॿुधा विया आहिनि। हमलनि जे नतीजे में 10 ॼणा मारिजी विया आहिनि ऐं केतिरा ई ज़ख़्मी थिया आहिनि। कुझु इमारतूं बि मुतासिर थियूं आहिनि।
0: अखीरपुर वेझो कारे इल्ज़ाम हेठि मुड़ुसु ज़ाल खे क़तल करे छॾियो। लाश इस्पताल मुंतक़िल। ॻोठ हाफ़िज़ सजण मैसर में जवाबदार अलाबख़्श मैसर ज़ाल साबरा खे क़तल कयो। वाक़िए बाद जवाबदार फ़रार थी वियो। इतलात पुलिस पहुची औरत जो लाश इस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204372 and 0242-460100।
6: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-8559।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आहीं?
7: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
7: न अदा
9: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
9: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
10: 03013992836
11: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

और इसी के साथ प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ होगा, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी. लेकिन

सबसे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना इंक्लूड करने जा रहे हैं, जिसको हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

आगे जो प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, SPCG मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है जो कि है www.facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग आपको मिलती है और वहाँ पे आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं. नहीं, ऑडियो स्ट्रीमिंग नहीं मिलती आपको, आपको मिलती है शो की पोस्ट. ठीक है, GFM88 पेज के ऊपर आपको शो की पोस्ट मिलती है, उस पोस्ट के नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और साथ साथ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, और कॉल कर सकते हैं जी 03000113488 इसके ऊपर. तो कॉल्स भी आप लोगों की रिसीव करेंगे बहुत सारी, कमेंट्स भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और गाना प्ले करेंगे और साथ में जाएंगे कमर्शियल ब्रेक की जानिब. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन GFM रेडियो नेटवर्क, सिंध की आवाज.

0: चेहरा पर एटलस होंडा मोटरसाइकिल टूर पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMB इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: नूर हुसैन सुनिया फ्रॉम बदीन.
0: नूर हुसैन सुनिया फ्रॉम बदीन, कैसे? ठीक ठाक
1: सर, फर्स्ट क्लास. अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हो?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ.
1: सर सॉन्ग सुन रहा है क्यों?
0: जी कौन सा?
1: समन का है, लखो बिश्री मुखम को उसरी.
0: ओके, गा के नहीं सुनाएंगे?
1: लखो बिश्री मुखम को उसरी मुझे सामने समाज वही वाइम प्री.
0: ओके जी, मैं प्ले करती हूँ. और ये क्या टाइटल है इस गाने का?
1: जी
0: क्या टाइटल, क्या बताया इस गाने का?
1: लखो बिश्री मुखम को उसरी मुझे सामने समाज वही वाइम प्री.
0: ओके जी, मैं प्ले करती हूँ. और कुछ?
1: बस सर, ठीक है खबर?
0: हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह. आपने बहुत सारा ख्याल रखें.

आगे जी भाई का गाना हम प्ले करते हैं और ये रहा गाना, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और ब्रेक के साथ वापस आएंगे.

0: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा।

0: ओके तो गाके सुनाए, जो गाके सुनाएगा ना बंदा उसी का गाना प्ले होगा, ये जो है ना सेगमेंट का रूल है. ओके कॉल ड्रॉप हो गई, गाना नहीं आता, कोई बात नहीं. एक और कॉलर लिंकी और नेक्स्ट कॉलर. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: यार जी सईद बात कर रहा हूँ सिंध सोसाइटी सेक्टर से.
0: सईद भाई कैसे?
1: बाजी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, आप सुनाओ ठीक हो?
0: हाँ जी मैं ठीक हूँ. कौन सा गाना सुना रहे हैं हमें?
1: गाना सुना रहा हूँ आरजी फायजा अली का,
0: सुना दी.
1: सिंधी सॉन्ग है. दिले
0: ओके
1: बच्चो तो खा प्यार बुचोआ, दिले बच्चो बच्चो तो खा प्यार बुचोआ, हिने संसार में इज़हार बुचोआ, दिले बच्चो बच्चो बच्चो. और आरजी माशाल्लाह आ रहे, हमारे पाकिस्तान का भी सेगमेंट का हमारे को बहुत इंतजार है माशाल्लाह. कल में आप नए पौधे की मालूम दी, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: है ना,
1: हाँ बहुत मजा आया. और एवोकाडो के बारे में आपने मालूम दी, मैं बहुत शौक से सुन रहा था, कल शामिल नहीं हो पा रहा. कॉल
0: आज भी सुनिएगा 12 बजे के बाद, आज भी 12 बजे के बाद सुनिएगा.
1: जरूर जरूर सुनूंगा इंशाल्लाह. और बहुत मालूम दी माशाल्लाह, ये भी चेक करूंगा आपको, ऐसे सवाल की आपको चुन चुन के माशाल्लाह, वो मेरे समझ लो सारे सवाल जो थे वो आपने खुद ब खुद कर दिए.
0: अरे वाह, बस इसी मोहब्बत और सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की तरफ से, और इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे सेगमेंट्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे
1: माशाल्लाह. जरूर जरूर आजी, ये भी नया पौधा है अभी, ये भी इंशाल्लाह ये भी हम ट्राई करेंगे लगाने की कोशिश करेंगे जरूर भी. और माशाल्लाह आपका पूछने का ऐसा अंदाज तरीका है, मैं आपको क्या बताऊं, शायद कोई इंजीनियर भी यार ऐसा सवाल आप नहीं कर सकता जैसे माशाल्लाह आप कर रहे हैं स्पोर्ट्स तरीके से.
0: चलें जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर सो मच अप्रिशिएटिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखें सईद,
1: थैंक यू, अल्लाह हाफिज.
0: अल्लाह हाफिज. और ये थे स्वीट कॉलर सईद, और इसी के साथ मेरे ब्रेक पे जाने का वक्त करीब आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता. तो हम एक गाना प्ले करेंगे गाने के साथ न्यूज ब्रेक, फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. दोनों के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अपना सेगमेंट अगला कर रहे होंगे जिसका नाम है हरा भरा पाकिस्तान. और हरा भरा पाकिस्तान में आज हमारे साथ एहतसाम मौजूद होंगे, और एहतसाम आज देखते हैं कि हमें किस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन GFM रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज.

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: गालियन चुभियो दौर शहीद आयतुल्लाह खमेनी जी आखिरी रस्म बाद रखने का इत्तेफाक। पाकिस्तान कतर पारा तस्दीक परे तर्जुमान चवैत कतरी सारसन अमरीकी ईरानी नुमाइंदन से अलग अलग मुलाकातों कई हैं। स्विट्जरलैंड में थियल गालियों ने इस्लामाबाद मफामती यादाशनामे से अकबराई की है। बिन्हीं मुल्क विच में गालियन जो बो दौर शहीद आयतुल्लाह खमेनी जी आखिरी रस्म बाद कतरी परे वजारत मूजिब अमरीका ईरान गालियों जारी रखने इतफाक किया है। आयतुल्लाह खमेनी जनाजे बाद बिन्हीं मुल्क में गालियों का सिलसिलो शुरू थी वेंदो।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ
2: 93.4
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: चलते हैं।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
4: खुश खबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूह वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियूं, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जीए मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. और वापस आ चुके हैं जी एक अदद ब्रेक के बाद. और बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. और मैसेज रिसीव हुआ है हमें. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. शहर गुलाब लगारी नज़्द गोट बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद और रिजवान अली रिंद फैजान अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कोनैन जेरा बाजी आपका शो सुन रहे हैं. आपकी बोलने का अंदाज अच्छा है. आपसे शिकायत है कि आप मेरे गोट का नाम गलत पढ़ती हो. यही तो लिखा है नज़्द गोट भाशम खान. यही तो लिखा है आपने. तो इसको गलत कैसे रीड कर रही हो मुझे ये बताइएगा.

0: रानी जी
1: और
0: मुझे अभी एक और मैसेज रिसीव हुआ है, अभी आपका शो सुन रहे हैं, हम भी आपका शो सुन रहे हैं। अब ये कौन है, ये कौन सुन रहे हैं, कौन कौन सुन रहे हैं, ये भी इन्होंने हमें नहीं बताया है। जी हमें एक और मैसेज रिसीव हुआ है, अस्सलाम वालेकुम सिंध की आरजी रुखसार, कैसी हो आप, हमेशा सलामत रहो। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है माशाल्लाह, आप सखर की शान हो माशाल्लाह। थैंक यू, वेरी नाइस, अच्छा लगा मुझे।

बहुत बेहतरीन है. थैंक यू शहबाज जमाली. इकबाल लाशारी भी हमें सुन रहे हैं, गुलाम अली हमें सुन रहे हैं. गुलाम अली जागीरानी हेयर, पहली बार आपके शो में शामिल हो रहा हूँ. आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छी है. सलाम चुसराज जागीरानी, थैंक यू. तारीफ के अलावा भी और बहुत सारी बातें होती हैं करने को, वो भी कर लिया करें. रियाज भट्टी हमें सुन रहे हैं फ्रॉम लाहौर, अमेजिंग शो. थैंक यू रियाज भट्टी. एक और सॉन्ग प्ले करेंगे और साथ में लास्ट लकी कॉलर्स को एंटरटेन करेंगे.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान में चौमासी दिवस कारण तबाही करे छी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में हादसनि जे नतीजे में 11 ॼणा फोत, 19 ॼणा ज़ख़्मी। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान ऐं इस्लामाबाद में बरसातनि सबबि वॾी तबाही। केपी सभ खां वधीक मुतासिर घरनि जूं छितियूं भितियूं किरण सबबि 4 ॿारनि समेत 7 ॼणा फोत थी विया। पंजाब में तूफ़ानी बरसाति दौरान 2 ॼणनि जे फोत थियण जी तसदीक। बलोचिस्तान में बरसाति सबबि 1 ई ख़ानदान जा 2 ॼणा फोत थी विया। सिंध में सुभाणे ऐं ॿिए ॾींहं तूफ़ानी बरसातुनि जी अॻकथी थियल। मौसमियात खाते चयो आहे त राड़काणो, सखर, जेकमबाद, कैरपुर, नशरफ़रोज, नवाबशाह ऐं दादू समेत मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में सुभाणे ऐं ॿिए ॾींहं तेज़ बरसाति पवंदी। कराची में वसकारे जो इम्कान आहे।
2: पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब सिक्योरिटी वारे शोबे में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ॿिन्ही मुल्कनि जे घरू वज़ीरनि पारां मुफ़ाहमती यादाश्त ते सहियूं बि कयूं। सऊदी घरू वज़ीर अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद चयो आहे त पाकिस्तान जे घरू वज़ीर मोहसिन नकवी सां गॾु सिक्योरिटी वारे शोबे में सहकार खे हथी ॾियण वारे मुआहिदे ते सहियूं कयूं आहिनि। कदम सऊदी अरब ऐं पाकिस्तान विच में गहरनि दोस्ताणनि लाॻापनि जी अकासी करे थो।
1: अमरीका ईरान विच में कतर में चाकरे ज़रिए ॻाल्हियूं। ॻाल्हियुनि जो बियो दौर शहीद आयतुल्ला खमनाई जी आख़िरी रस्मनि बाद रखण ते इतफ़ाक़। पाकिस्तान ऐं कतर पारां तसदीक पढ़ी तुर्चमान चयो आहे त कतरी सालसन अमरीकी ऐं ईरानी नुमाइंदनि सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं कयूं आहिनि। स्विट्ज़रलैंड में थियल ॻाल्हियुनि इस्लामाबाद मफ़ामती यादाशनामे ते अॻभराई थी आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में ॻाल्हियुनि जो बियो दौर शहीद आयतुल्ला खमनाई जी आख़िरी रस्मनि बाद थींदो। कतरी पढ़ी वज़ारत मूजिब अमरीका ऐं ईरान ॻाल्हियूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। आयतुल्ला खमनाई जनाज़े बाद ॿिन्ही मुल्कनि में ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू थी वेंदो।
2: सदर ट्रंप वाज़े मक़सद बिना ईरान ख़िलाफ़ ॿीहर कार्रवाई जे हक़ में नाहे। ईरान जे एटमी प्रोग्राम जी बहाली वाशिंगटन खे हिकमत अमली तब्दील करण ते मजबूर करे सघे थी। अमरीकी नायब सदर जे डी वेनस चयो आहे त दोहा में थींदड़ ॻाल्हियूं सुठे अंदाज़ में अॻिते वधी रहियूं आहिनि। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त अबनारमुलसिन टेकाम जे न पर ईरान जे कंट्रोल में आहे। फ़ौजी इजलास अबनारमुल जे सिक्योरिटी जो ज़ामिन न थो थी सघे।
1: कराचीअ में अक़लियती मामलनि बाबति पार्लियामेंट जी ख़सूसी कमेटी जो इजलास। सेनेटर्स, अक़लियती एमएनएस शरीक, प्रिया कुमारी समेत अक़लियतनि बाबति मामला गौर हेठ। चीफ सेक्रेटरी जे गैर हाज़िरी ते कमेटी पारां कावड़ जो इज़हार। एस एन जी डी जो चीफ सेक्रेटरी जे गैर हाज़िरी ते वज़ाहतूं।
2: सिंध में कारे इल्ज़ाम हेठि वधीक 2 औरतूं क़तल। जवाबदार फरार खैरपुर वेझो कारे इल्ज़ाम हेठि मुड़ुस ज़ाल खे क़तल करे छॾियो। ॻोठ हाफिज़ सजल मैसर में जवाबदार अलाबख़्श मैसर ज़ाल साबरा खे क़तल करे फरार थी वई। दादू वेझो बि मुड़ुस ज़ाल खे कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल करे छॾियो। पुलिस मूजिब ॻोठ घर पंहिंजा में शादीशुदा औरत उमेरा हाजी जो खे मुड़ुस ज़ाल ज़ाहिद हाजी जो कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियूं।
1: खिपरो वेझो बासरनि पारां मुबैना तौर ते तंग करण बाद आबकार कंदड़ नारी जो केस दाख़िल थियण बाद भील बिरादरी 5 हंधनि ते लॻल धरणा ख़तम करे छॾिया। नारी हेमे जे वालिद सवाई भील जी फरियाद ते ॿिनि जवाबदारनि वॾेरे फितोदस ऐं कमदार कासिम दाजर ते दाख़िल कयो वियो। केस दाख़िल थियण बाद नारी जे बासरनि धरणा ख़तम करे छॾिया।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN News।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई मा अख्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
4: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 03 85 569 03 00 33 8 55 69।

0: हलो जगह जा पावा ऐं पाइप डेढ ब चार छह नव ऐं ॿारह इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: Brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
1: चेहरे पर खूबसूरती सिर्फ काफी नहीं, स्किन को चाहिए डीप क्लेंजिंग और भरपूर हाइड्रेशन. इसलिए मैंने चुना डी स्किन फेस वॉश, जो मिले हाइलुरोनिक एसिड सीरम के एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ एंड सल्फेट फ्री मेडिकेटेड फॉर्मूला, जो स्किन को डीप क्लेंज करे जेंटल केयर के साथ, और सीरम का पावरफुल फॉर्मूला चेहरे की डलनेस को रिमूव करे, स्किन को हाइड्रेट और रिवाइटलाइज करे. हर वॉश में चेहरा रहे स्मूथ एंड रिफ्रेश एवरी डे.
2: हर दिन मिले फ्रेश निखार, डी स्किन फेस वॉश.
1: अब हर दिन डी स्किन फेस वॉश. अ प्रोडक्ट बाय डी एस कॉस्मेटिक्स.

0: क्या बात है जी, यहाँ सरदा सौदा कर बैठी है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलाम यहाँ पर आप इंजॉय कर रहे थे और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। आप इस्तेमाल करते जाएंगे और खूबसूरतियाँ हासिल करते जाएंगे और हमें बताते जाएंगे कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और साथ ही साथ अगर खूबसूरतियाँ आप हासिल करना चाहते हैं लेकिन ये चीज़ है कि भाई आके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल मिल नहीं रहे हैं, आपने मालूमात ली है लेकिन आपके यहाँ अवेलेबल नहीं हुए अभी तक, तो उसके लिए आप डायल करते हैं 03 15 7 99 05 95। ये जल्दी से नंबर जो है ना आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं और आप इजीली वहां से जाकर परचेज कर सकें। ओके जी, तो अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होगी किस तरह आप बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ पहले जो है ना आप लोगों के लिए आज के प्रोग्राम का सवाल क्या है वो बताते हैं। तो आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो कुछ इस तरह से होने वाला है। कुछ लोगों की ना ये बड़ी आदत होती है कि वो ना मतलब बहुत ज्यादा जो ना वो सच बोल रहे होते हैं। ऐसा है कि कहते हैं कि भाई अच्छी बात होती है सच बोला करें, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है ना कि कुछ अगर आप सच ऐसे होते हैं जो अगर आप बोलते हैं तो किसी इंसान को बुरा लग जाता है, किसी की दिल आजारी हो जाती है। तो हम ये भी सोच रहे होते हैं कि अगर हमारे सच बोलने से किसी की दिल आजारी होती है तो कई मरतबा हम ये सोचते हैं कि क्या ये चीज सही है या फिर गलत है। तो आज जो मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है ना वो कुछ इस तरह से होगा कि क्या हर सच बोल देना जरूरी होता है या फिर नहीं। मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से कि आप इस टॉपिक के ऊपर क्या कहने वाले हैं कि क्या हर सच बोलना जरूरी होता है या फिर नहीं। और इसके अलावा अगर आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे जी, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आइए वहां पर और हमारे साथ साथ ज्वाइन हो जाइए। आपको हमारे प्रोग्राम की पोस्ट मिलती है बिल्कुल लाइव व्हाइट एशियन जी स्किन ब्यूटी शो की, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपका क्या ख्याल है कि क्या हर सच बोल देना जरूरी है या फिर नहीं। क्योंकि कई मरतबा हम जरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस मेरे सच बोलने की वजह से अगले इंसान के ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है या फिर थोड़ा सा मसला बन सकता है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका इस टॉपिक के ऊपर क्या रद्द अमल होने वाला है कि आप बताइए कि क्या हर सच बोल देना जरूरी होता है या फिर नहीं। और आप मुझे ज्वाइन कीजिए 8881 पर और फेसबुक पर, जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाइए और पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। जितना शेयर करेंगे उतना लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में अब कौन से और कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो जरा बात की जाए कि जब आप लोग अवेलेबल कराना चाहें और आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अवेलेबल कराएंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र आता है तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल है व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है, उसके साथ व्हाइट एश लवली क्रीम है जो कि फेयरनेस क्रीम है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है और व्हाइट एश सोप है, व्हाइट एश फेस वॉश है, व्हाइट एश लोशन है, व्हाइट एश हेयर रिमूवल लोशन है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर अवेलेबल है, उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है एंड डी स्किन फेस वॉश है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इजीली किसी भी जनरल स्टोर से जाकर मालूमात ले सकते हैं, मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहे तो फिर उसके लिए आपको नंबर बताया जा रहा है जिसके ऊपर आप रابطہ करेंगे ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं। जल्दी से अवेलेबल कराते जाइए और इस्तेमाल करते जाइए और मुझे बताइए कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके जी, आपके फीडबैक्स हैं जो कि हमें मिलते जा रहे हैं, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आप लोगों की वजह से हमारे प्रोग्राम में रौनकें होती हैं जनाब। तो बिल्कुल जी, हमारे प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाइए और बताइए आप कहाँ से हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। आदिल हुसैन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ आदिल, आप बताएं आप कैसे हैं। हजार खंजा तो ये हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू शो। अच्छा, फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मौला इस्लाम अदर, मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसे हैं। नजीर खोस हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, खुशामदीद, और लिखते हैं कि ताकत हमेशा हक नहीं होती और हक हमेशा ताकतवर नजर नहीं आता, लेकिन सच्चा किरदार आखिरकार लोगों के दिल जीत लेता है। चलो आज से हम अपने किरदार को मजबूत बनाने का अहद करें। ओके जी, बहुत बढ़िया। और हजार खान भाई कहते हैं हम भी आपके साथ साथ हैं, बहुत शुक्रिया जी, हम साथ साथ ही वाली टीम बनाते हैं। और जी शिराज अली हमारे साथ मौजूदी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं कैसी हो पहचाना मैं कौन हूँ नहीं जी मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना आपको और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद कहते हैं ग्रेट होस्टिंग मैम आज थैंक यू सो मच सर बंडल ऑफ थैंक्स और चाचा खालिद हमारे साथ मौजूदी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट ओके नोट कर दी आपकी रिक्वेस्ट मैंने मोहम्मद जमान हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम वेलकम टू शो अच्छा शिराज कहते हैं ये आईडी तो शिराज की है लेकिन ये जो शो सुन रहा हूँ मैं कौन हूँ मुझे थोड़ा थोड़ा हिदायतुल अहमदानी लग रहा है बाकी नहीं पता और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं वालेकुम अस्सलाम मिठो देरों से आपने हमें ज्वाइन किया है बहुत शुक्रिया और मासूम अच्छा उदास निदड़ी हमारे साथ है उदास निदड़ी हैं कहती हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारी आरजे वेलकम टू शो मैं भी आ गई जल्दी जल्दी से अब हाँ पैरों में दर्द हो रहा है चलें इतनी जल्दी से मैं मत आया करें ना वैसे आज आप सबसे पहले आ चुकी हैं प्रोग्राम में आपको वेलकम कहा जाता है और अब्दुल अजीज हमारे साथ हैं वेलकम करते हैं फराज अली बरोही हमारे साथ हैं खुश आमदीद अनवर भाई हमारे साथ हैं अदी आखिर में हलाए जो ही वारो गानो चलिए मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल सबकी फरमाइशें लगाएंगे एम अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं वालेकुम अस्सलाम वेलकम जी आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और हजार भाई कहते हैं कि आज कोई सॉन्ग सुनाना शमन का डेडिकेट माई क्राइम पार्टनर योर टॉपिक आंसर सच बोलना जरूरी नहीं चले ये ठीक बात है आपके मैसेजेस मुझे मिलते ही जाएं मैं देखती जाऊंगी कि आपका क्या क्या जवाब होगा इस टॉपिक के ऊपर कि क्या हर सच बोलने देना जो ना जरूरी होता है या फिर नहीं क्योंकि अक्सर हमने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं सर सच तो गालायो आए पर उन सच की वजह से केतरन मानो जो जिंदगी तबाह थी वेंदियूं आहिनि या फिर उन्हें जिंदगी ते केतरो इफेक्ट पवंदो आहे उन्हनि चीज़ुनि खां असां थोरो बेखबर हूंदा आहियूं या फिर असां इहो चवंदा आहियूं त असां बस सच ॻाल्हाए से पंहिंजो फर्ज़ निभाए छॾियोसीं अगलो इंसान पाण ॼाणे सो मूंखे ॿुधायो त इहा चीज़ सही आहे या फिर न ऐं थोरो हिन ते अॼु ॻाल्हाईंदासीं बिल्कुलु तव्हांजा मैसेजिस मूंखे मिलंदा वञनि पिया ऐं तव्हां पंहिंजा मैसेजिस सेंड कंदा वञो शेयर कंदा वञो पंहिंजी प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं इन खां अलावा मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो पिया वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हणो पिया या डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायो पिया टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो जल्दी वापसी तव्हांजी मोटी टू था तव्हां काटे न वञिजो इते वेठा हुजो तव्हांजो असांजो साथ पूरे पूरे टे बजे ताईं मां ओहीअं वञी ओहीअं मोटां थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए खूबसूरत होते रहिए
1: GA FM 88 सिंध की आवाज
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह ॾहें खां शाम पंजे वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8556-9।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

प्रोडक्ट इस्तेमाल कयूं कहिड़ी चीज़ असांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदी ऐं कहिड़ी शइ उहा आहे जेका असांखे इस्तेमालु करणु घुरिजे त ख़ासि करे माण्हुनि खे ॾिठो वेंदो आहे त हू अगरि कोई बि प्रोडक्ट उन्हनि इस्तेमालु कयो हुजे ऐं इस्तेमालु करण खां बाद में उन्हनि खे रिज़ल्ट जेको आहे उहो सुठो ऐं बहितर न मिलियो हुजे त उनजो जेको एतबार आहे न उहो सभिनी प्रोडक्ट तां हटी वेंदो आहे ऐं अगरि इहो तव्हां सां बि सीन आहे इहो तव्हां सां बि ईअं हले पियो थिए पियो त इन ॻाल्हि खां थोरो निकिरी अचो छो त मार्केट में हाणे भला भला प्रोडक्ट अची विया अथव ऐं भला भला प्रोडक्ट्स में तव्हांजे लाइ वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि ऐं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जी अगरि मां तव्हांखे थोरी बि ॻाल्हि ॿुधायां वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांखे हर तरह जो प्रोडक्ट मिली रहियो आहे हाणे ईअं न आहे त केरु जेके माण्हू असांखे ॿुधनि पिया उन्हनि जे लाइ कंहिं बि माण्हू जेको बि मतिलबु वारो प्रोडक्ट न आहे हर कंहिंजे लाइ हर हिकु मतिलबु वारो प्रोडक्ट आहे अगरि तव्हां नाइट क्रीम नथा आणो त तव्हांजे लाइ फेयरनेस क्रीम आहे साबुण नथा आणो त फेस वॉश आहे फेस वॉश नथा आणो त साबुण आहे ऐं अगरि तव्हांजे चहिरे ते एक्नी आहे त उन्हनि जे लाइ बि तव्हांजे वटि जेको आहे न प्रोडक्ट मौजूदु आहे सो हर हिकु माण्हू जे लाइ प्रोडक्ट तयारु थियलु आहे जंहिंमें तव्हांखे मुख़्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ मिलंदियूं ऐं न सिर्फ़ु तव्हांजी ख़ूबसूरती वधंदी बल्कि तव्हांखे जेका ख़ूबसूरती मिले थी उहा हमेशह तव्हांजे चहिरे ते बरक़रार बि रहण वारी आहे सो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जी अगरि ॻाल्हि कयूं त वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट में तव्हांखे सभ खां पहिरियां वाइटिश ब्यूटी क्रीम जे बारे में ॿुधाईंदी हला त वाइटिश ब्यूटी क्रीम अगरि आप इस्तेमालु करे रहे हैं त वाइटिश ब्यूटी क्रीम जो है उहा की ख़ूबसूरती को बढ़ाने के लिए काम करती जिसके अंदर एवोकाडो मौजूद है मिल्क मौजूद है एलोवेरा मौजूद है और उसके साथ साथ जब आप वाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जल्द जो है वो फ्रेश हो जाती है आपकी स्किन गोरी हो जाती है हर किस्म के नुकसानदार असरात से आपकी स्किन को पाक रखने के लिए है और झुर्रियां हो दाग धब्बे हो ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती है तीन रातें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट मिल जाते हैं तो वाइटिश ब्यूटी क्रीम जो कि इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा आप इस्तेमाल करके देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मार्केट में अब कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं और उसी के साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वाइटिश ब्यूटी क्रीम के साथ कोई अच्छा वाला साबुन या फिर फेस वॉश लगाने वाले लोग हैं तो आपके पास वाइटिश ब्यूटी सोप भी अवेलेबल है इन फेस वॉश भी अवेलेबल है अगर आप सोप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सोप जो है वो नॉर्मल है जनाब जिसके अंदर एलोवेरा मौजूद है मिल्क मौजूद है एवोकाडो मौजूद है और अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं वाइटिश वालों का तो वाइटिश फेस वॉश के अंदर जो है ना विटामिन सी मौजूद है और आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है एंटी एजिंग के लिए है क्रीमी फेस वॉश है जब आप इस्तेमाल करते हैं क्रीमी के साथ साथ ड्रीमी फेस वॉश भी है अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कीजिएगा बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं और ऑल स्किन टाइप के लिए है जितने भी वाइटिश वालों के प्रोडक्ट्स हैं ना ये ऑल स्किन टाइप के लिए हैं इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है इतनी शानदार क्वालिटी है इनकी और साथ साथ अगर आपकी स्किन के ऊपर दाने काफी ज्यादा हैं और दानों को खत्म करना चाहते हैं और साथ साथ दानों के साथ साथ आपके चेहरे पर बड़े से जो है ना वो निशान भी जमा हो चुके हैं कोई चोट का निशान है कोई जलने का निशान है कितने ही निशान फालतू अगर आपकी स्किन के ऊपर अवेलेबल है मौजूद है तो उनको आप खत्म करेंगे और उनके लिए आपके पास मौजूद है डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो कि आप नाम लेकर तलब करते हैं अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा तो जो नंबर आपको बता रही हूं उसके ऊपर रابطہ जरूर कीजिएगा और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आपके चेहरे के ना सिर्फ दाने खत्म करता है ये चीज भी याद रखिएगा कि अगर आपके चेहरे पर दाने हो दानों के निशानात हो या फिर आपके चेहरे पर किसी भी तरह का एक्नी हो क्योंकि लोगों के मुख्तलिफ मुख्तलिफ एक्नीज होते हैं तो किसी भी तरह का एक्नी हो जलने का निशान हो कट का निशान हो कोई बचपन में आपको चोट लगी थी उसका निशान अभी तक है उसे खत्म करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अलावा लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और मजे की बात है कि जब आप वाइटिश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके चेहरे पर थोड़े थोड़े से दाने भी हैं थोड़े थोड़े से हैं तो आप वाइटिश ब्यूटी क्रीम के अंदर एड भी कर सकते हैं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब यानी कि दोनों चीजें आप मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं वाइटिश लवली क्रीम अगर आपके पास मौजूद है या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाइटिश की जो लवली क्रीम है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेडियंट अल्ट्रा विटामिंस के साथ तैयार की गई है 30 विटामिंस के कैप्सूल ऐड किए गए हैं बात यहीं पर नहीं रुकती इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड किया गया है जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी सूरज के इन खतरनाक असरात से और इसके अंदर विटामिन B3 है विटामिन सी है विटामिन डी है एंड विटामिन ई मौजूद है इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अगर आपके पास मौजूद है तो आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा लड़के हो लड़कियां हो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जिन लोगों को फार्मूले यूज करने का बड़ा शौक होता है ना फार्मूले भाई वो यूज करना चाहते हैं तो आप वाइटिश ब्यूटी क्रीम लीजिए उसके अंदर डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब ऐड कीजिए वाइटिश लवली क्रीम ऐड कीजिए ये इतना बेहतरीन आपका फार्मूला बन जाता है ना कि जैसे आप लगाएंगे तो आपकी खूबसूरती जो है ना वो डबल हो जाएगी तो ये है जनाब वो प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खूबसूरती बढ़ेगी और बढ़ने के साथ साथ हमेशा आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्ट भी रहेगी तो इस्तेमाल करते रहिए खूबसूरतियां हासिल करते रहिए और डायल करते रहिए 03 15

7990595 0390 79 5095. ही नंबर आ जंहिं ते तव्हां राबितो कंदा ऐं राबिते करण खां फौरन बाद तव्हांजे एरिया में अवेलेबल थी वेंदा ही तमामु प्रोडक्ट्स ऐं उन खां पोइ तव्हां जेको आहे इस्तेमाल करे सघो था ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती खे वधाए सघो था. सो प्रोग्राम आहे जनाब वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए क्या हर सच बोल देना जरूरी होता है या फिर नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए थी और कहते हैं बदले में माँ तो सच्ची गालायो आहे. सो बताइए हर सच बोलना जरूरी होता है या फिर नहीं.

बिल्कुल ही प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करें कौन सा प्रोडक्ट बताइए मुझे जल्दी से, टाइम की बड़ी किल्लत है हमारे पास। और चाचा खालिद क्या कहते हैं, नहीं जरूरी नहीं हर सच्ची बात बोलना, जैसे मुझे देखो कितना जब्त का दामन थाम कर बैठा हूँ आपके साथ साथ शो में। ये टॉपिक आंसर तमाम साथ दुनिया भर जा जेके भी गमन हो मुख लगे तो चाचे जी झोली में प्याला है, अल्लाह से आगे खुश करे। उनके अलावा आकाश अली हमारे साथ मौजूद है, आप ही आप कैसी हैं, मैं आकाश अली पीरजादो फ्रॉम मोरो सिटी, वेलकम करते हैं मोरो वालों को। अच्छा निदली कहती है टॉपिक नहीं नहीं मैं तो ऐसा सच नहीं बोलती जैसे इंसान को बुरा लगे या वो हर्ट हो जाए। ओके किशोर भाई हमारे साथ हैं, आओ भी अच्छी वजह से अदा खुश आयो सफा मजे में ताऊ उदा किया है। और अनवर भाई कहते सिद्रा सुनाने भी न थी सुनाणियों था बाबा सुनाणियों था ताकि सुनाणी दासी बाकी कहके सुनाणी दासी। और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ मौजूद है, कहते सच बोलना सही है। ओके और निदली कहती है कि हाँ वो कल तुमने बोला था ना कि शो में आया करो इसीलिए मैं जल्दी आ गई और तुम्हें पता है मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ। हाँ जी कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है। और मोलाई मुजाहिद बोजारो हमारे साथ मौजूद है ठूप चूसर से, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी आप बताएं आप कैसे हैं, ठीक ठाक है मजे में। और ये कहते हैं वैसे कसम से तुम जैसा समझदार मैंने कहीं नहीं देखा अपनी जिंदगी में, देखो पहचान लिया ना, कोई भी लिसनर छुप नहीं सकता तुमसे। हाँ ये बात है मैं हर किसी को पहचान जाती हूँ मैं ना छोटा सा डिटेक्टिव हूँ, मेरे अंदर ना ये चीज है कि मुझसे कोई भी चीज जो है ना वो छुप नहीं सकती, कोई भी इंसान मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकता, पता नहीं क्यों ये है मेरे अंदर। और कई बार तबा मुझे ये लगता है कि शायद ये चीज मेरे अंदर ना होती तो कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद मुझे ना पता चलती और मैं जिंदगी में खुश होती क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें जिंदगी में अगर पता चल जाती हैं तो हमें तकलीफ देती हैं, तकलीफ का बायस बनती हैं, तो कुछ चीजें हाइड ही रहे तो अच्छा होता है।

0: बताएं जरा कितने जख्मी हुए। हाँ जी पकड़े गए।
1: मेरी आंखें जैसे शोला
0: राज खोला।
1: मैं तो जानू
0: जानू

ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आप एंजॉय करें। काफी दिनों के बाद हमने बिजली गाना एंजॉय करा और मेरा बड़ा दिल था कि हम बिजली गाना भी सुनेंगे जनाब। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं जल्दी से बताइए। और मुलायम मुजाहिद 2000 कहते हैं सिडू जी आज तो मेरी पसंद का गाना लगाइएगा। बिल्कुल जी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक, अगर आपका सच किसी बेशोर या मासूम इंसान को नाहक नुकसान पहुंचाता है तो वहां रुक जाना बेहतर है, लेकिन अगर सच छुपाने से किसी और के साथ नाइंसाफी हो रही है तो सच बोलना आपका फर्ज बन जाता है। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। ओके जी, और किशोर भाई क्या कहते हैं टॉपिक, सब खां पहरियां सच चवण जो हौसलो हुजे, बियो सच किथे चवणो आ हिन जी पे समझ हुजे। ओ इहा गाल। अच्छा ए मंसारी कहते हैं टॉपिक पे से जो बात सीधी है, बंदा अपनी बात सच कहे तो हम सच वही बोलते हैं जिसमें हमारा फायदा हो या हमें क्रेडिट मिले, लेकिन मैंने जो वक्त हालात और रिश्तों से सीखा है, जब आप ज्यादा सच बोलेंगे तो अकेले हो जाएंगे, बट अगर किसी की दिल आजारी या कोई रिश्ता बच जाए और अच्छा बच जाए तो घनो गामू से चार न थियो बट सच का अपना बल होता है, लोगों को आईना दिखाओ तो उन्हें अपना चेहरा पसंद नहीं आता। कहूँ तो छा कहूँ प्ले लेला बाय अली जफर। ओके, गाना अच्छा बोला है, लगाते हैं। वैसे तवां जी गाल में बिल्कुल दमा है। मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि जब भी आप आईना उठाया करें तो पहले खुद देखा करें फिर लोगों को दिखाया करें, लेकिन ये हौसला बहुत ही कम लोगों के अंदर मौजूद होता है।

अच्छा एम अंसारी कहते हैं एक बात और भी ऐड कर दूं कि लोग सच जल्दी कह देते हैं लेकिन जब सच सुनने की बात आती है तो मुंह बना लेते हैं। बिल्कुल जी ये बात है। और मुजाहिद बोजदार कहते हैं सिडो टॉपिक में एक दिन स्कूल में गया था, पापा ने पूछा मुजाहिद तुम कल स्कूल गए थे, मैं बोलने लगा लेकिन अम्मी बोलने लगी हाँ हाँ कल ये स्कूल गया था। मैंने सोचा पापा को सच बोल दूं, मैंने पापा से बोला मैं नहीं गया था तो पापा ने खूब पीटा। तो मेरे ख्याल में खुद को बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए, क्या बोलती तू? इस मामले में मैं नो बोलती, स्कूल तो जाना चाहिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है। हाँ भाई ये बात है, इतने लंबे लंबे कमेंट्स करे, कमेंट पढ़ने के साथ साथ मेरा टाइम खत्म हो गया। अच्छा उनके अलावा अब्दुल रजाक भाई वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और लखमीर अबड़ो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जी, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सॉन्ग सुना दीजिए, गाना सुनाते हैं जी आपको, सॉन्ग नहीं। दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। चंदा जानी आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी हैं। अच्छा किशोर भाई कहते हैं दुनिया में जितने भी खूबसूरत लोग हैं उन सबके पीछे व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का कमाल है। ओ या गाल लगे तो हानि तक समझ में आई, मेरी खूबसूरती के पीछे व्हाइटिश लवली क्रीम का हाथ है, तमाम भी जरूर लगाए जो थे तमाम भी खूबसूरती हो सामगे। निदड़ी कहती है लगता है सबकी वीसी खुली है, आज इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं वीसी खुली है वाकई सबके, लग रहा है रोज वीसी खुली बाबा, इलाही सारा मैसेज कमेंट करना करो। और हिदायतुल्लाह कहते वैसे सिद्रा मैंने सुना था नहीं, धक्के वाला काम जो है ना वो थोड़ा पीछे रह गया है, तो एंजॉय करें जिंदगी को। और उसके अलावा जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद आपको वेलकम करते हैं, और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और साथ साथ बताइए आप कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं और कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें या फिर कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारी है जनाब आपकी खूबसूरती की, और यहाँ पर खूबसूरती के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करें। खूबसूरती के मामले में मैं चाहती हूँ कॉम्प्रोमाइज कोई भी ना करें, तो इस्तेमाल कीजिए व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, और डायल करते रहिए 03-15-799-0595। अच्छा न्यूज ब्रेक, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ।

0: सिंध में कारे इल्ज़ाम हेठ वधीक ब औरतूं क़त्ल जवाबदार फरार खैरपुर वेझो कारे इल्ज़ाम हेठ मुड़ुस ज़ाल खे क़त्ल करे छॾियो ॻोठ हाफिज़ सजण मैसर में जवाबदार अला बख़्श मैसर ज़ाल साबिरा खे क़त्ल करे फरार थी वियो दोदापुर वेझो बे मुड़ुस ज़ाल खे क़त्ल करे कारे इल्ज़ाम हेठ पुलिस मूजिब ॻोठ घर पंहिंजा में शादीशुदा औरत हुमेरा हाजेजो खे मुड़ुस ज़ाहिद हाजेजो कारे इल्ज़ाम हेठ क़त्ल कयो आहे वधीक जांच करे रहिया आहियूं
1: रोड़ीअ में क़त्ल थियल ॿिनि ॼणनि जी तदफ़ीन 14 जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल 5 गिरफ़्तार छुहारा मडीअ भरसाव पुराणे तकरार सां क़त्ल थियल अब्दुल हफ़ीज़ ऐं मंठार मीराणी जा मड़ जनाज़े नमाज़ बाद दफ़नाया विया पुलिस केस दाख़िल थियण बाद 5 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो क्लाशन कोफ ऐं पिस्टल हथ
0: भोजपुर में बदमनी खिलाफ़ शहरी सरापा एहतजाज इंडस हाईवे ते धरणो मुज़ाहिरीन जो बदमनीअ ते ज़ाब्तो आणण जो मुतालबो रहवासियुनि जो चवण आहे त घोसपुर ऐं भरपासे जे इलाइक़नि में अमुन अमान जी सूरतहाल इंतिहाई ख़राब आहे जेसि ताईं फुर थियल सामान वापसि न थींदो तेसि ताईं एहतजाज जारी रहंदो
1: शहदाद कोट में ज़मीनी तकरार सां क़त्ल थियल नौजवान जे वारसनि जो लाश रखी धरणो जवाबदार खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो ॻोठ फ़क़ीर मोहम्मद बिरोही में मारिजी पियल लश्करी बिरोही जे वारसनि अलावारी चौक ते धरणो हयो हुननि चवण आहे त नौजवान खे बेगुनाह क़त्ल कयो वियो आहे क़त्ल में मुलज़िम जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़
3: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारनि ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ 0300 3 85 569 0300 3 8 5 6 9

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
4: आपकी जो फीडबैक्स हैं वो मुझे मिलते जा रहे हैं मजीद आप भेजते जाइए पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम की रौनकें हैं जनाब आप लोग और इसी के साथ साथ मैं जो चीज आप लोगों को बताने लगी हूँ वो बात भाई आपकी खूबसूरती की रौनकें हैं अगर आप ये अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं खूबसूरत खूबसूरत रहना चाहते हैं प्यारे प्यारे रहना चाहते हैं तो आपके लिए मार्केट में मौजूद हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप परचेज कर रहे हैं अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में थोड़ी सी बातें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी या बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार की गई है सबसे पहली बात कि जनाब ये डॉक्टर से अप्रूव किया हुआ प्रोडक्ट है डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है ऐसा कोई सी नहीं है कि इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद आपकी खूबसूरती में जरा सा इधर उधर वाला सीन हो जाएगा बल्कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खूबसूरती बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि ना विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन से तैयार की गई है अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑल स्किन टाइप के लिए है सेंसिटिव स्किन वाले भी लगा सकते हैं कितनी स्किन सेंसिटिव क्यों ना हो आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं और सिर्फ 2 दिनों में वाज़ह नतीजे के लिए आप डी स्किन वाइटनिंग नाइट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जदीद अज्जा से तैयार की गई जिसके अंदर अल्फा आर्बुटीन मौजूद है कोजिक एसिड मौजूद है ग्लूटाथायोन मौजूद है और जनाब ये क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कितने अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते जाते हैं आपकी जल्द को जो है ना वो ऐसे मॉइस्चराइज करती है चमकदार बनाती है आपकी जल्द में जो है ना वो ऐसा सीन बन जाता है कि आप खुद ही कहते हैं कि भाई जान हम पहले क्यों नहीं लगा रहे थे डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में सिदरा इतने टाइम से बता रही है तो सिदरा जो बुधाई थी तांगे तो उन्हें थोड़ो अमल कयो ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल सां तव्हांजी खूबसूरती सफ़ा तव्हांखे जेको आहे न वापसि मिली वेंदी अक्सर माण्हू जी जेका खूबसूरती हूंदी आहे न उहा ईअं हूंदो आहे सीन त तव्हां जेको आहे न पहिरियां अगरि तव्हांजो रंग सही हूंदो हुयो नॉर्मल हूंदो हुयो अगरि तव्हां वक़्त सां जीअं कमकार कंदा आहिनि मर्द ज़रा थी विया ख़वातीन थी वियूं पंहिंजो ख़्यालु न रखंदा आहियो त तव्हांजी स्किन जेका आहे न डल थी वेंदी आहे डलनेस जे तरफ़ वेंदी आहे अगरि तव्हांजी स्किन बि डल थी वई आहे तव्हां ते कोई बि क्रीम सूट न आहे कंदी तव्हांजी छो त स्किन घणी सेंसिटिव आहे त उन्हनि माण्हुनि जे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं सिर्फ़ ईअं न त बाबा सेंसिटिव स्किन वारा सोचनि था असांजी अथव असांजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी ना है सभी जी अव डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना हर कोई जो हर स्किन वो मानू इस्तेमाल कर सके तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सो तुम भी इस्तेमाल कर नाइट के टाइम यानी कि रात के टाइम अच्छा उन खां अलावा तव्हां गॾु में इस्तेमालु कंदा डी स्किन फेस वॉश ठीकु आहे ऐं डी स्किन फेस वॉश जी अगरि ॻाल्हि कई वञे त डी स्किन फेस वॉश जेको हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां तयारु थियल आहे तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट कंदो तव्हांजी स्किन खे क्लीन कंदो तव्हांजी स्किन खे मॉइस्चराइज़ कंदो इहे सभु चीज़ूं जॾहिं तव्हांजी स्किन ते थी वेंदियूं न पोइ तव्हांजी स्किन सफ़ाई चमकणु शुरू थी वेंदी सो अगरि तव्हां बि चाहियो त तव्हांजी स्किन इहे चमकंदी वधे तव्हां ग्लो कंदा वधो त तव्हां इस्तेमालु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश डी स्किन फेस वॉश जेको आहे न उहो तव्हां 2-4 मरतबा ताईं ॾींहं में लगाए सको था रात जो सुम्हो तभी पांजो फेस वॉश करे सुम्हो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका है या तव्हां रात जे टाइम लगाईंदा सुम्हण खां पहिरियां ठीकु आहे तव्हां सुम्हण वञो त उन खां पहिरियां पंहिंजो फेस वॉश कयो डी स्किन फेस वॉश सां उन खां पोइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां पंहिंजे चहिरे ते अप्लाई करे छॾियो ऐं सुकून सां लॻायो प्यार सां लॻायो ऐं मसाज न कंदा कयो क्रीम अगरि तव्हां चहिरे ते लॻायो था खोड़ माण्हुनि जी इहा आदत हूंदी आहे त जेका नाइट क्रीम उहो इस्तेमालु कंदा आहिनि उनजो मसाज कंदा आहिनि ॼण उन्हनि खे फेशियल हथु अची वियो आहे हीअ फेशियल न आहे हीअ नाइट क्रीम आहे हिन खे तव्हां प्यार तसली सुकून सां लॻाईंदा कयो सुकून सां लॻाईंदा तॾहिं तव्हांखे भला रिज़ल्ट मिलंदी जॾहिं तव्हांजी हथ जी हीट उनखे पवंदी आहे न जॾहिं क्रीम तव्हां लॻायो था हथ जी हीट उनखे पवंदी त थोरो मसलो बणिजी सघे थो असां नथा चाहियूं त मसलो बणिजी वञे बाबा तव्हां प्यार सुकून तसली सां लॻायो ऐं आराम सां लॻायो उन खां पोइ तव्हां रिलैक्स थी करे सुम्ही पओ उन खां पोइ सुबुह जो उथी तव्हां सभ खां पहिरियों कमु कयो पंहिंजो फेस वॉश कयो डी स्किन फेस वॉश लगायो ऐं पोइ ॾिसो त तव्हांखे केतिरा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलणु स्टार्ट थी विया आहिनि सो इहे ख़ूबसूरती जूं ॻाल्हियूं आहिनि बेबी जेके असां कंदासीं तव्हां सां गॾु पूरे 3 बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो आहे प्रोग्राम में ऐं तव्हां असांखे जॉइन कंदा वञो पिया तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि बिल्कुलु शाम जो प्रोग्राम रखूं था ऐं तव्हांजे लाइ गाना आहिनि जेके प्यारे प्यारे असांजे लिस्ट में मौजूदु आहिनि जेके असां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलंदासीं ऐं तव्हां छा था चओ उन्हनि तरफ़ बि अचूं था

ओके जी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सलाम अलैकुम, जी वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी थर्सडे आफ्टरनून, माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मस्कान जो खमिस हुई मुख्य खबर रोय वाला चंगो तो बुधाए और टॉपिक हाँ बोलना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए और कहती है कहाँ से लाती हो ऐसे टॉपिक प्यारी, ऐसे सॉन्ग प्ले करो कि मजे हो और माजी भी याद दिला दी आपने स्वीट डियर। और ओए प्यारी, हमारे यहाँ लाइट अच्छी है, ससुराल में मायके में नहीं होती थी। फजीला सिंधी हमारे साथ है, मायके वाले जी गिला कर रही थी सावरा छा मिलिया छोकरी के बाजी जेका ना पलटजी वे बाबा ने सावरा बलाएं सुठी गाला, सुठी गाला, एंजॉय कर बाबा।

पोस्ट को लाइक और शेयर करें। बाबा छो कंजूसी दिखारी अव छो ये सफा लाइक क्या अव छो मुझे बुधायो अनता उनका अलावा जो माहिन बलोच हमारे साथ मौजूद है। हेलो हाउ आर यू, मुझे सॉन्ग सुनाओ जेनी मशहूर आया तेनी मकरूर आया। ओके ओके, और कहती है किशोर भाई को कहो कॉल पर आया करे और गाना सुनाया करे। किशोर भाई की कॉल नहीं लगती ना मेरे प्रोग्राम में, क्या करे। ये किशोर भाई बड़े मशहूर हो चुके हैं, क्या चल रहा है ये किशोर भाई। अच्छा अंसर अली हमारे साथ हैं, कहते मां त हक सच ई चवंदो आया। ओके अंसर भाई तां जो मोहब्बत हुआ है काफी टाइम का पोई तां प्रोग्राम में शामिल थे। अच्छा अच्छा खालिद तवां जो गानो आ है केड़ो गानो हाने लाया पेरे जो को फरमाइश कियो या ही वारो जो को हाने चयो थो। आप भी चाचा हमें कंफ्यूज कर दे रहे हैं।

ओके जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। आप इस्तेमाल कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं मुझे बताइए। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह जी बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही, तव्हांजे ॻोठ में अवेलेबल नाहे, तव्हांजे सिटी में नथी मिले, छो त ईअं आसीन थोरो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न हर जॻह अवेलेबल आहे, लेकिन डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे न उहो अवेलेबल थोरो मतलबु लेट थियो हुयो। सो अगरि अञा ताईं तव्हांजे एरिया में नथो मिले त उन लाइ तव्हांखे डायल करणो आहे 03-15-799-0595-0315-79-5-595। ही नंबर आहे जेको तव्हां डायल करे पंहिंजे एरिया में अवेलेबल कराए सघो था। नंबर ते तव्हां कॉल कयो या फिर मैसेज कयो, ठीकु आहे। उन्हनि वीचारनि खे तंग न कयो, मिस कॉल ॾेई भॼी न वञो।

ओके जी ओके सोनी हमारे साथ कह रही आप ही देखे ना आपकी मम्मा मुझे सुनती हैं। अगर सुनती हैं तो बताएं जरा मम्मा को कुछ बात बोलनी है मैंने। अच्छा सजाद अली जमाली है नवाब शाह से शो आपका नाइस से सॉन्ग प्ले कीजिएगा शमन अटे जरूर इंदो बाबा तां थोड़ो सबर कयो। अच्छा ये भाई कहते हैं अल्लाह सफा भी न मान तमा सा चार पंच कलाक गाल है सगांदी चार पंच कलाक प्रोग्राम करे सगांदी। और ये हमारे साथी जी विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी बाजी सिद्रा तमा की आयो बाजी कुछ तक कदर कयो शेला गुल जो गानो हलाइंदा कयो हाजिर हाजिर गानो हलायूं था। थैंक यू डेडिकेटेड ड्राइवर नजीर सोलंगी आसिम अली सोलंगी सिराज सोलंगी अल्लाह वसायो एंड सफीर सोलंगी जी नाले ओके अच्छा अब्दुल रजा कहते हैं वाइट एश ज्वेलरी शहर हली पोटो स्टाप में कौन थी मिले वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त आए ऐसा बुधू था बाबा बुधो था तो लगान भी घुर्जे बिल्कुल तवाज एरिया में अवेलेबल करायूं था।

ओके जी, दर्दे दिल भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। दर्दे दिल क्या बात है, आपको खुश आमदीद एंड वेलकम कहा जाता है। और उनका अलावा किशोर भाई कहते हैं, गाइज आपने कभी परी देखी है? नहीं देखी। ये हमारी अदी सिद्रा मुस्कान, इसने भी नहीं देखी। मैंने देखी है, मैंने देखी है बालवी ड्रामे में। एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, ऐसा कौन करता है भला। अल्लाह से डोर नहीं।

हाय अल्लाह केड़ियूं गालियूं कयो था एड़ी भी गाल कोनी अच्छा हिकिड़ो मिंट बीहो सबर कयो टाइम थियो आहे शॉर्ट कमिशन ब्रेक वठूं था हुन खां पोइ वापसी जल्दी मोटी तव्हांजी अचूं था तव्हांजो असांजो साथ पूरी पूरी टे बजे ताईं अथव तव्हां कॾहिं न वञो हिते वेठा हुजो मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हणंदा रहो ऐं सोणा थींदा रहो

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। सो बिल्कुल जी ॾाढो भलो गानो आहे जेको तव्हां ॿुधो पिया आहियो। फ़ैसली जी आवाज़ में चली फरमाइश असांखे माहिन करे छॾी हुई, सो ही हुनजी फरमाइश ते असां गानो लॻायो आहे। उन खां अलावा असां प्रोग्राम जी लास्ट लिंक में पहुची विया आहियूं, त जिन माण्हुनि हाणे ॿुधणु स्टार्ट कयो या

0: ना सस्ती कॉपी थी ओके जी फिलहाल सही आ चुके हैं टू नंबर
1: मैं हो गया निफिदा तेरा ये नशा मेरे सिर ते छा गया ऐसी तेरी अदा मैं हो गया निफिदा।

ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ आप लोग मौजूद हैं, धड़ाम धड़ाम से आपके कमेंट्स आते जा रहे हैं, कुछ ऊपर भागते जा रहे हैं, तो जो बचे हैं उनको शामिल प्रोग्राम रखते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से कीजिए। और साथ साथ हैं जी हमारे साथ निदड़ी, हमारी प्यारी निदड़ी हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद कहते हैं आपको। अच्छा निदड़ी भी खूबसूरत थी, तो जदें का निदा जो है वाई जेस ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करण शुरू कयो आए, सो तमाम भी थियो बाबा सोना खूबसूरती मिली वेंदी तमाम के भी। और जहीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, हेलो। अच्छा हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं, जहाँ पे कैंसर झूठ बोल देना चाहिए लेकिन वहाँ जहाँ सामने वाले को सच का पता ना हो, वरना कुटकी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा सनोला फिल्म पोर्टर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई जान?

हाँ जी हिदायत उल्लाह बिल्कुल देखा हुआ है और स्मार्ट गोपाल हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, कुंबर सिटी से आप हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद। अच्छा आपने गाना बोला है, गाना थोड़ा आप लेट आए हैं ना, तो गाना जरा आपका स्किप हो जाएगा क्योंकि हम आपका गाना जो ना कल परसों सुन लेंगे। उनखा अलावा मुजाहिद बोजार तवा जो गानों भी हलायो था बाबा थोड़ो सफा ओ हेतरो सबर कयो। आई उनखा अलावा जी को आसो बिलाल अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद जनाब। अच्छा ये अब्दुल अहद अब्दुल अहद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है, कितना डिफिकल्ट नाम या मुझे लग रहा है। अब्दुल अहद अब्बासी वालेकुम अस्सलाम। ओके जी कंदरा से आप हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद। अच्छा चाचा तुम्हारे फेस वॉश खपे तो नंबर से राबतो कर मालूम कर एरिया में किथे अवेलेबल आ ना तो अवेलेबल करा या उनके चो तो टीसीएस

अच्छा फहीम शेख तमाशे से घर मौजूद आए, मोहब्बतू तमाजू बाबा वी आई पी तमाश शायरी लिखा पढ़ूँ था। और बिलाल कहते हैं कि वो कहती थी परीजात की तरह बनो फिर शादी करूंगी, धूप में घूम घूम कर काला हो गया, अब ब्लॉग कर गई। उसका मतलब जरा वो नहीं था।

अच्छा मोतिया से तानिया हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अंसारी साहब कहते हैं कि तू बहुत जाजेबो जमील सही, जिंदगी जाजेबो जमील नहीं, मत करो बहस सिदरा हार जाओगे, हुसन इतनी बड़ी दलील नहीं। ओ या गाल, बिल्कुल सही चाहिए। वैसे खूबसूरती जगह आवाज़ ज़रूरी भी होंदी आहे थोरी, अगरि तव्हांजी उमिरि वधंदी वञे थी, उमिरि सां गॾु गॾु तव्हांखे प्रोडक्ट जी ज़रूरत पवंदी आहे। इहो मां हिन लाइ चवंदी आहियां छो त हिन ॻाल्हि जी खोड़ सारे माण्हुनि खे ख़बर कोन्हे का। तव्हां पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो ऐं वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट सां गॾु गॾु तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो बि इस्तेमालु करिणो पवंदो। ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जीअं तव्हां इस्तेमालु कंदा तव्हांखे ख़बर पवंदी त तव्हां वटि हिकिड़ो अहिड़ो प्रोडक्ट मौजूदु आहे जेको एतिरो ज़बरदस्त आहे जेको तव्हां कॾहिं बि जहिड़े तरह जो प्रोडक्ट इस्तेमालु कोन कयो हूंदो। छो त जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त हिन जे अंदरि जेके बि चीज़ूं आहिनि जेके एड कयूं अथसि उहे चीज़ूं तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदियूं, तव्हांजी ख़ूबसूरती सफ़ाई वीआईपी चिकनी थी वेंदी ऐं तव्हां पाण चवंदा बाबा वाह वाह वाह वाह छा त सोणा थी विया आहियूं। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले त पोइ डायल कयो 03-15-799-0595-0315-79-5595 हाणे लॻे थो ईअं बि नंबर मूंखे यादि थी वेंदो। ओके जी, सो ही तमामु ख़ूबसूरत गानो हलायो आहे फ्रॉम द मूवी कोई तस्सा कहां। हिन मूवी जा सभु गाना भला आहिनि, हिकु खां वधीक हिकु।

इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो। अच्छा फहीम शेख लिखते हैं कि माना कि तूने दर्द बढ़ाए हैं आज तक, हमने भी अपने अश्क छुपाए हैं आज तक, पत्थर जमाने भर के तो हंस कर सहे मगर, शिकवे ना लपर तेरे लाए हैं आज तक, मुफलिसी की झोंपड़ी में जो फाकों का राज है, ये नोहे हमने सबको सुनाए हैं आज तक, वो आके मेरे पास कभी बैठता ही नहीं, ख्वाबों में जिसके दीप जलाए हैं आज तक, सच कहने की सजा तो मिली है हमें मगर, कोड़े तो मसलहत के ना खाए हैं आज तक। ओके जी, वेरी नाइस।

हूँ, बहुत ही प्यारा सा गाना यहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ वक्त जो है वो बहुत ही जागे थोड़ा हमारे पास बचा है। सोनी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। सोनी की अम्मी जान भी हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच। और सोनी की अम्मी जान को बस यही कहूंगी कि आप सोनी को ज्यादा तंग मत किया करें। मेरे को खास अब्दुल्ला भाई कहते हैं आपका भाई हमारे साथ है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे भाई आपको वेलकम करते हैं। और मुनव्वर अली मुगल हमारे साथ, यदि खुश है बिल्कुल भातान जो मोहब्बत हूँ तो आंसर से गड मौजूद आए।

0: अच्छा फोजिया सुमरो जो जो गानो ना वो थोड़ो मथे भजी गयो सो नेक्स्ट टाइम दूसरे। अच्छा निधि कहती है कि हाँ हाँ मुझे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ने ब्यूटीफुल बना दिया है, अब आप सब भी यूज करें और प्यारे प्यारे बन जाएं। बिल्कुल जी प्यारे प्यारे बन जाइए। और ये मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम बाजी, आपका प्रोग्राम सुनता हूँ बहुत और शामिल नहीं हो पाता, आप बहुत अच्छी हैं। ओके जी, आपने अपना नाम तो लिखा ही नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा दर्दी दिल कहती है कि टॉपिक सच बोलना अच्छी बात है, पर कभी सच बोलना महंगा भी पड़ जाता है, तो कभी सच बोला करो कभी झूठ बोला करो। ओके बिलाल कहते हैं गाना अच्छा है मेरी तरह, क्या बात है। और रहें जी हमारे साथ एम अंसारी कहते हैं हमें प्रोडक्ट्स की जरूरत है मगर कोई दिलाए ना, हाय हाय इतनी सुस्ती, हाय हाय
1: किरणों से सजाए
0: सुस्ती या फिर
1: प्यार
0: ए गुर्बत। सच बताएं क्या मसला है,
1: ये सारे इसमें बिताए।
0: अच्छा वासु भाई हेलो। अच्छा अब्दुल अहद अब्बासी कहते हैं मोहतरमा आओ एफएम जो
1: बनाए।
0: अच्छा एफएम रेडियो में पहिरों भेरो शामिल थियो आहे, इन लाइ वक्त जी खबर नाहे, अवां इनायत फरमायो अवां जो प्रोग्राम कॾहिं ईंदो आहे। बिल्कुल भाके ॿुधाईंदासीं, मुंहिंजो प्रोग्राम डेली ईंदो आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो आहे, जुमे ते मुंहिंजी मोकल हूंदी आहे, बाक़ी सॼो हफ़्तो तव्हांजो मथो खाईंदा आहियूं।

जैसा कहा। अनवर भाई मत करें। अच्छा डायल करते रहिए 03157990595 और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम प्रोग्राम का लास्ट ब्रेक लगाते हैं।

कहोगे। सो ये बहुत ही प्यारा गाना हमारे प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक है और इसी के साथ साथ आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त भी बड़ा करीब आ चुका है। और आबिद हुसैन शम्बानी भाई हमारे साथ मौजूद है। कहते अति हाणे कूड़ जो ना फैशन बनजी वो है, बिल्कुल बात हाँ सही था जो मुनव्वर मुगल है मीरपुर खास से। कहते अति लाड़काना में घूमने की कौन सी जगह है? भाई बहुत सारी जगह है लाड़काना में घूमने की, मतलब बहुत ज्यादा है, इतनी कि मुझे पता ही नहीं लेकिन मोहनजोदड़ो जो कि आप घूम सकते हैं। उसके अलावा अब तो भाई मुझे लगता है कि रोजाना लाड़काना में नया होटल खुलता है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो कि आप घूम सकते हैं।

भाई ॾाढो गम मिलियो आहे वीचारे खे, सो दिलि जेका उहा बर्बाद थी वई अथसि, ऐं असां हाणे हितां निकिरण जी वारी कयूं था। और उन खां अलावा फ़हीम कहते हैं कि आज में चुप करके शो सुन रहा था, छो भला का ख़ासि ॻाल्हि हुई? बिलाल कहते सिद्रा अब हम हलेंगे फिर मिलेंगे, ओके आई एम अल्सो हलेंगे। अच्छा वाकई भाई शमन का गाना आज रह गया प्रोग्राम में, वरी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में तवांखे शमन जो गानो ॿुधाईंदासीं, फलो सफ़ा वी आई पी शमन जो गानो ॿुधंदासीं। सो ओके सो वेंदी वेंदी तव्हांखे चवंदी वेंदमि त अगरि अञा ताईं तव्हां सोचो पिया बाबा त तव्हां वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कंदा त सोचो न बाबा, एतिरो न सोचींदा कयो, तव्हांजी ख़ूबसूरती जेका आहे न उनखे ज़रूरु

आहे त हू व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि उन्हनि जो इस्तेमालु कयो तव्हां ऐं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तव्हां इस्तेमालु कंदा तव्हांखे हर तरह जो प्रोडक्ट हिन जे अंदरि मिली वेंदो तव्हांखे नाइट क्रीम मिलंदी तव्हांखे फेयरनेस क्रीम मिलंदी तव्हांखे साबुण मिलंदो तव्हांखे फेस वॉश मिलंदो हर तरह जा प्रोडक्ट अवेलेबल आहिनि ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि आहे डी स्किन फेस वॉश बि आहे तव्हां लाज़मी लॻाए सघो था ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती वधंदी बाबा तव्हां ख़ूबसूरत रहो ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो ऐं डायल कयो 03 1579 0595 ओके सो वरी इन साला तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी सेटरडे ते थियण वारी आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो जनाब सो ईअं ई साथ ॾींदा जीअं हमेशह ॾींदा आहियो ऐं किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां थी जंहिंजा फीडबैक रहिया आहिनि जंहिंजा गाना रहिया आहिनि सभिनी खां माज़रत कयूं था सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत अलाह हाफ़िज़ बाबाई लव यू ऑल एंड

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: के जरिए गालियों जो बियों दौर शहीद आयतुल्लाह खमनाई की आखिरी रस्मन बाद रखने ते इत्तेफाक पाकिस्तान कतर पारा तस्दीक पड़ी तर्जमान चवाद कतरी सालसन अमरीकी ईरानी नुमाइंदन से अलग अलग मुलाकातों क्यों आन स्विट्जरलैंड में थियल गाल इस्लामाबाद मफामदी यादाश्त नामे ते अगवाई थी है बिन्ह मुल्क में गाल बो दौर शहीद आयतुल्लाह खमनाई की आखिरी रस्मन बाद कतरी पार्टी वजारत मूजिब अमरीका ईरान गाल जारी रखने से इतफाक कर आयतुल्लाह खमनाई के जलाले बाद बिन्ही मुल्क में गाल सिलसिलो शुरू थी वो सदर ट्रंप वाजे मकसद बिना ईरान खिलाफ बीहर कार्रवाई के हक में ना ईरान के एटमी प्रोग्राम की बहाली वाशिंगटन की हिकमत अमली तब्दील करण से मजबूर कर सके थी अमरीकी नायब सदर जेडी वेल्स है दुआ में थन्द गाल सुठी अंदाज में अगत रहा ईरानी नायब परदेही वजीर काजम करीब आबादी है आबना हुरमज के इनकाम के न पर ईरान के कंट्रोल में है व फौजी इजलास आबना हुरमज की सिक्योरिटी को जामिन न तो थी सके। पाकिस्तान में चौमासी के वसकार तबाही कर छी मुख्तलिफ शहर में हादसों के नतीजन में 11 जणा फौत 19 जणा जख्मी पंजाब केपी बलोचिस्तान इस्लामाबाद में बरसात सबब वरी तबाही केपी सब का मुतासर घर छितियों भितियों किरण सबब चैन बार समय 7 जणा फौत पंजाब में तूफानी बरसात दौरान बिन जणा की फौत की तस्दीक बलोचिस्तान में बरसात सबब एक ही खानदान जब जणा फौत सिंध में सुभाने बे ढी तूफानी बरसात की अगकथी थियल मौसमियात खाते है तो लड़कानो सखर जकमबाद खैरपुर फिरोज नवाबशाह दादू समेत मुख्तलिफ जिले में सुभाने बे ढी तेज बरसात पवंदी कराची में भी वसकारे जो इम्कान कराची में अगलती मामलों बाबत

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: मेरा व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 385 569 0300 333 8569।

हलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

हाणे ईरान ऐं तुर्कीअ जे दौरे ते रवानो थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई जी जनाज़े नमाज़ में शरीक थींदो। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अदराबी चयो आहे त पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे जी हिकतरफ़ी मुअतली खे रद्द कयो आहे। सिंध तास मुआहदे बाबति सेमिनार में बि सिंध तास मुआहदे खे हथियार तौरु इस्तेमाल न करण ते ज़ोर भरियो वियो। तालिबान ऐं ख़ारजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन गज़बुलत जारी आहे। पाकिस्तान पंज शहरनि जी सलामतीअ ते को बि ठाह न कंदो। अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन जो इस्तेमाल रोके। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब सिक्योरिटी वारे शोबे में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ॿिन्ही मुल्कनि जे घरू वज़ीरनि पारां मफ़ामती यादाश ते सहियूं बि कयूं वयूं। सऊदी घरू वज़ीर अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद चयो आहे त पाकिस्तान जे घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां गॾु सिक्योरिटी वारे शोबे में सहकार कदीरनि वारे मुआहदे ते सहियूं कयूं आहिनि। क़दम सऊदी अरब ऐं पाकिस्तान विच में गहरनि दोस्तान लाॻापनि जी अकासी करे थो। अमरीका ईरान विच में कतर मिर्चाकड़े ज़रिए ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनेई जी आख़िरी रस्मनि बाज़ रखण ते इतफ़ाक़। पाकिस्तान कतर पारां तस्दीक। परॾेही तर्जुमान चयो आहे त कतरी सालसन अमरीकी ऐं ईरानी नुमाइंदनि सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं कयूं आहिनि। स्विट्ज़रलैंड में थियल ॻाल्हियुनि ऐं इस्लामाबाद मफ़ामती यादाशनामे ते अॻुवाई थी आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनेई जी आख़िरी रस्मनि बाद थींदो। कतरी परॾेही वज़ारत मूजिबि अमरीका ऐं ईरान ॻाल्हियुनि जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। आयतुल्लाह ख़ामेनेई जी जनाज़े बाद ॿिन्ही मुल्कनि में ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू थी वेंदो। सदर ट्रंप वाज़े मक़सद बिना ईरान ख़िलाफ़ ॿीहर कार्रवाई जे हक़ में न आहे। ईरान जे एटमी प्रोग्राम जी बहाली वाशिंगटन खे हिकमत अमली तब्दील करण ते मजबूर करे सघे थी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस चयो आहे त दोहा में थींदड़ ॻाल्हियूं सुठे अंदाज़ में अॻिते वधी रहियूं आहिनि। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीबाबादी चयो आहे त अबन हुरमज़ सेंटकॉम जिन पर ईरान जे कंट्रोल में आहे फ़ौजी इजलास अबन हुरमज़ जी सिक्योरिटी जो ज़ामिन नथो थी सघे। पाकिस्तान में चौमासी जे बस कारनि तबाही करे छॾी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में हादसनि जे नतीजे में 11 ॼणा फौत, 19 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। पंजाब के पी बलोचिस्तान ऐं इस्लामाबाद में बरसातनि सबबि वॾी तबाही। के पी सभ खां वधीक मुतासिर घरनि जूं छितियूं भितियूं किरण सबबि 4 ॿारनि समेत 7 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। पंजाब में तूफ़ान बरसातुनि दौरान 2 ॼणनि जी फौत थियण जी तसदीक। बलोचिस्तान में बरसातुनि सबबि 1 ख़ानदान जा 2 ॼणा फौत थिया। सिंध में सुभाणे ऐं ॿिए ॾींहुं तूफ़ानी बरसातुनि जी अॻकथी थियल। मौसमियात खाते चयो आहे त लालकाणो, सखर, जकमबाद, खैरपुर, नशरफ़रोज, नवाबशाह ऐं दादू समेत मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में सुभाणे ऐं ॿिए ॾींहुं तेज़ बरसाति पवंदी। कराची में बसकार जो इम्कान आहे। कराची में अकलियती मामलनि बाबति पार्लियामेंट जी ख़सूसी कमेटी जो इजलास। प्रिया कुमारी समेत अकलियतनि जे मसलनि ते गौर। कमेटी मेंबर्स पुलिस खां प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ वक़्तु ॾियण जो मुतालबो। सिंध पुलिस प्रिया जी बाज़ियाबी बाबति वक़्तु ॾियण खां इनकार। प्रिया कुमारी केस में ग़लति डायरेक्शन में कम करण जो एतराफ़। सिंध कमेटी जो आज सिंध खे इस्तखाक कमेटी में तलब करण जो फ़ैसिलो। कमेटी चेयरमैन दिनेश कुमार चयो त ख़बर पई आहे त प्रिया जे अॻुवा में कुझु बासर माण्हू मुलिस आहिनि। जीआरटी जोड़ी वञे। डीआईजी नासिर आफ़्ताब चयो त प्रिया जे अॻुवा में को बि बासर मुलिस न आहे। असांजी डायरेक्शन ग़लति हुई। धाड़ियल मारिजी विया आहिनि। हिकु जेल में आहे।

0: time to commercial break.
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधिक राबते जे लाइ 0363 00 33 8 5 6 9।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120

0: वो आता है या जाता है, बिछड़ों को मिलाता है. सवाल है, वो आता है या जाता है, बिछड़ों को मिलाता है. क्या है ये जानने के लिए कॉलर की जानिब चलेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम कहेंगे जनाब, कौन बात कर रहा है? खुश आमदीद कहेंगे आपको. क्या जवाब है हमारे सवाल का, वो आता है या जाता है, बिछड़ों को मिलाता है?
1: जी वो है रास्ता.
0: सॉरी क्या कहा?
1: रास्ता यानी रास्ता.
0: चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. अच्छा जी, ये राइट आंसर नहीं है इनका. आपने बताना है वो आता है या जाता है, बिछड़ों को मिलाता है. और जनाब राइट आंसर क्या है सवाल का? यहाँ मुझे रॉन्ग आंसर एक मिला है, वो दिल है. ये जवाब मुझे मिला है. नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम. भाई या बहन आप जो भी हैं, रेडियो बंद कर देंगे. चलिए जी, आपकी तो कॉल ही बंद हो गई है. खैर है, कोई मसला नहीं है. और जनाब आपने मुझे बताना है कि वो क्या है जो आता है और जाता है, बिछड़ों को मिलाता है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
0: जनाब वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है?
2: मैं इकरा बात कर रही हूँ.
0: इकरा कैसी हैं आप?

0: चले अभी कॉल लग गई है, आपने सवाल का जवाब देना है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा इकरा, थैंक यू। ओके जी, और बहुत से लिसनर्स को शिकायत होती है कि कॉल अटेंड नहीं होती है, नंबर बिजी होता है। और एक ये चीज भी क्लियर करूं आपको, जब भी आप लोगों की कॉल आती है ना, यहाँ कॉलर का नेम लिखा हुआ नहीं आता है, नंबर आ रहा होता है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कौन कॉल कर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है?
1: मैं डीके बात कर रही हूँ।
0: खुश आमदीद कहेंगे डीके, आपको कैसी हैं आप? ठीक है
1: जी, ठीक हूँ।
0: क्या कहेंगे सवाल के जवाब में, वो आता है या जाता है, बिछड़ों को मिलाता है? नहीं, ये तो नहीं है। ये भी नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया डीके आपका, थैंक यू। वो आता है या जाता है, बिछड़ों को मिलाता है, सवाल का जवाब क्या हो सकता है? ओके, और नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जनाब वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है? वेलकम कहेंगे अदा आपको, वो आता है या जाता है, बिछड़ों को मिलाता है, क्या जवाब है इस सवाल का?
2: सही तो नहीं आ रहा, खत्म तो नहीं है,
0: यही दुरुस्त आंसर है अदा, थैंक यू आपका, शुक्रिया।
2: थैंक यू भाई।
0: अच्छा अदा, इकबाल लाशारी जब भी आते हैं ना, वो राइट आंसर ही लेके आते हैं, लेटर यानी खत, आता भी है खत, जाता भी है, ठीक है। और बिछड़े हुओं को मिलाता है, मतलब के लोगों के साथ जो है हमारी कम्युनिकेशन जो है मजबूत होती है इसके आने और जाने में।

0: दिन हर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: आन के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: दरियाए सिंध की लबदमा।

ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते

0: तव्हांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0303-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन, MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी ए मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्क सीमेंट रंग वगैरह बाजार
1: का बलोच पेट्रोल
2: 00037

मैरापुर शहर में जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे तई मौजूद हुंदी आहे रूटीन जे मुताबिक खबर आहे जेके असांजे प्रोग्राम में मौज़ूआत हूंदा आहिनि नंढियूं नंढियूं बीमारियूं या वॾी वॾी जेके बीमारियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे बारे में अवेयरनेस ॼण असांजे प्रोग्राम जो मक़सदु बि इहो ई हूंदो आहे त अवेयरनेस ॾींदा आहियूं त चाहे कहिड़ी बि बीमारी हुजे या उन जे मुतालिक ॼाण या उन जे मुतालिक कहिड़ा टोटका हूंदा आहिनि जहिड़ो इलाजु हूंदो आहे उन जे बारे में ॾस वग़ैरह ॾींदा आहियूं अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं अॼुकल्ह तव्हां ॾिसंदा आहियो त ख़ासि तौर ते छो जो गुज़िरियल प्रोग्रामनि करण खां बाद में असांखे जेके फीडबैक मिलंदा आहिनि या वरी असां वटि SMS वग़ैरह ईंदा आहिनि त हिन बीमारी जे बारे में असांखे ज़रूरु अवेयरनेस ॾिसंदा आहियूं त रोज़मर्रा जे मुंहिंजे क्लिनिक ते बि उहे इहे हूंदा आहिनि जेके अॼुकल्ह जेके खोड़ सारा पेशेंट ईंदा आहिनि जो त जेके जिन जा आसाब कमज़ोर थी वेंदा आहिनि या अॻूं कमज़ोर थी वेंदियूं आहिनि बेसिकली उहा बीमारी जेको आहे सो जे बारे में ॿुधाईंदासीं त उहा बीमारी खे छा चइबो आहे या उन बीमारी जेकॾहिं थी वञे त उनखां छा करणु घुरिजे एक्चुअली इन बीमारी खे जेको मेडिकली नेम हूंदो आहे उनखे उहो चइबो आहे पार्किंसंस डिज़ीज़ पार्किंसंस डिज़ीज़ एक्चुअली हिकिड़ो जेको आहे सो अंग्रेज़ डॉक्टर हुयो जेम्स पार्किंसंस उन जॾहिं उन ते तशख़ीस कई ऐं

0: लाइव कॉल ज़रिए अवांखे मुख्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा अवां लाइव कॉल ज़रिए असांजे प्रोग्राम में शामिल। अरे पिते जी पथरी हूंदी आहे, ऐं अक्सर करे ज़िक्र कंदो आहियां त पिते जी पथरी जा माण्हू ख़ासि तौर ते परेशान हूंदा आहिनि। या अॼुकल्ह जीअं गर्मी जी मौसमु आहे, मलेरिया बि थिए थी, ऐं मलेरिया मच्छरनि जी बि मौसमु हूंदी आहे, त इन बाबति बि कुझु ॼाण ॾींदा। माना अॼु जेकी मौसमु आहे या लुक लॻे थी तमामु घणी गर्मी आहे, इन खां माण्हू पंहिंजो पाण कीअं बचाइनि?
1: बिल्कुलु साईं, जेको आहे सो तमामु ज़बरदस्त, जेको आहे सो ज़रूरी ॻाल्हि बि

0: खूबसूरत राज सिर्फ डी स्किन हिन में मौजूद ऐं जदीद माइक्रो बीट्स फार्मूलो लिखी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307 3592120

0: अच्छा घटिया हो अच्छा पंद्रह वरी देख वरी न देखा रे तो जाने तबीयत में फर्क फर्क पियो आन तबीयत में रिजल्ट मिलियो है ना
1: हां ए पर वो ना वो सीरो
0: पान बे डॉक्टर साहब
1: हां
0: आबू दो एफएम दो डॉक्टर

ॿारनि जो कदु नथो वधे, औरतुनि में वज़न वधी वियो आहे, जिन जो वज़न नथो वधे, यानी कि मोटापे जो शिकार आहिनि औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि, यानी सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कनि था। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, इस्लामाबाद पाकिस्तान जो मशहूरु मारूफ डॉक्टर, हाणे अवां मेहरापुर में मौजूदु आहे, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं, वधण पोटरा पेट्रोल पंप, कोटली मोहम्मद कबीर रोड, मेहरापुर शहर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछर, आचर ऐं सूमर ते। हर जुमे, छंछर ऐं आचर ते चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री आहे, बिल्कुलु मुफ़्त आहे। जर्मन

0: जर्मन जो मेडिकल जॾहिं ॿाहिरि मुल्क पंहिंजो आहे यानी जर्मन जो दवाऊं डॉक्टर साहब इस्तेमालु कंदा आहिनि में 9801 शामिल थी सघो था 0 21 96 सां राबितो कराब पिते जी पथरी जेका आहे ऐं अक्सर करे चवंदो डॉक्टर साहिब वटि तव्हां एलोपैथी दवाउनि में वेंदा त न जो मौजूदु आहे हुसैन मेमन साहिब वटि पिते जी पथरी ऐं पाल करण सां ॾिसंदो चवंदो इलाज करायां मुंहिंजी पिते जी पथरी इते जो हिते पहुतूं आहिनि डॉक्टर साहिब खे डॉक्टर साहिब पंहिंजे पुॼाइण जी तरफ़ वञे पियो सिर्फ़ु 2 मिंट वञी बचो आहे ऐं चवंदुसि कुझु कंहिं मौज़ू बाबति ॼाण ॾियणु चाहियो असांजे मौज़ ॿुधंदड़नि खे त वराम ॾियणु चाहियो कहिड़ा कहिड़ा ॾींहं वियो था हिकु दफ़ो अवां रिपीट कंदा तव्हांजी महिरबानी थींदी पर हिन खां बहितर आहे हिकिड़ी काल प्रोग्राम में असीं डॉक्टर साहिब शामिल कंदा हलूं था कॉलर ॾिसूं किथां जो हूंदा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम किथां था ॻाल्हायो परेशानी हूंदी अधु मथे में सूर थो पवे या सॼे मथे में सूर थो पवे हरु भरु थो पवे न हा मथे में सूर थो पवे ठीकु ठाक न हुजे ॿुधायूं था बहितर आहे डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारे वञो न त डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाए थो उमिरि घणी अथव हार्पो कंदो आहे न को मसलो ई कोन्हे को हिंगोर जाइ मेरा प्रकटी कबीर बसि इहो आॾो वरी टन खाई बसि
1: बिल्कुलु तव्हां सही चयो त मथे जो सूर बज़ाहिर ई का बीमारी न हूंदी आहे अलामत हूंदी आहे करे मथे जो सूर थी सघे थो ब्लड प्रेशर जे करे कहिड़ी बि तकलीफ़ जे करे बहितर में ढराए न

0: अगेंस्ट एन ऑथराइज्ड कैपेसिटी ऑफ अराउंड 14,000।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8569।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: projects to running a multi-billion dollar company. Click the link below to create your workspace for free.
1: अमेरिका ईरान विच में गालियन जो बियो दौर शहीद आयतुल्लाह खामनाई जी आखिरी रस्मन बात थींदो वाशिंगटन ए तेहरान जो इत्तेफाक कतर तस्दीक करे छी अमेरिका ईरानी वफदन सा दोहा में मुलाकातू थी बिन्ही दूरियन आयतुल्लाह खामनाई जी आखिरी रस्मन बात बीहर गालियन शुरू करने इत्तेफाक कयो आहे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जी दो तालिबान ए खारिजी दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी आहे दो अफगानिस्तान जमीन जो इस्तेमाल रोके दोहा गालियन में अमेरिका ए ईरान गालियूं जारी रखने ते भी इतफाक कयो वियो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो नाए वगे एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधिक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 0320180003
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300 स्कूल सिस्टम मेहरापुर
2: 0301-386-5453
3: प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04-371-2
4: Assalamualaikum, Ada. Wa alaikum assalam, Ada. Chho, Pareshan aahi. Ada, nao dukaan kholyo tam par halei na to chha kaje. Ada dukaan ji mashhoori karai athai. Na, Ada. Yaar, ajkal sharan tode gochhan mein. Ji, mera par FM 94 hale tho. Mo panjo dukaan kholyo to FM mera par te publicity karai. Karobar ehdo kamyab ayo jo 8 band karan te Delhi nathi chave. Mujhe dukaan ji be darandi. Haan, da, karo.

0: वारे इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
0: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03119

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम, 5 डे विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मकता निखार ताजगी के साथ, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉल पाकिस्तान।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर, होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर, नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर मौजूद। इरशाद मोटरसाइकिल ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट बनी थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड राब्ते जे लाए 0320180003।
2: मेरान आयरन स्टोर होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: गुर्बत में घटताई थोड़ी अवाम के सहूलतूं न मिली रही आहिनि। अरिड़हीं तरमीम बाद भी वफ़ाक समाजी ख़िदमतनि ऐं माशी सरगर्मियुनि में मुलविस आहे, जंहिं सां वसीला ज़ाया थी रहिया आहिनि ऐं जवाबदेही जो निज़ाम बि मुतासिर थी रहियो आहे। अमरीका ऐं विच ओभर वारनि मुल्कनि जो अपना हरमुस मां कारोबारी सरगर्मियूं बिना रडक जारी रखण लाइ गडि॒यल कोशिशूं करण ते इतफ़ाक़। अमरीकी सेंट्रल कमांड जी क़यादत में बहरीन में 12 मुल्कनि जे फ़ौजी सरबराहनि जो इजलास। अमरीका, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लेबनान, शाम, यूएई ऐं यमन जे आला फ़ौजी अमलदारनि जी शिरकत। अमरीकी फ़ौज जे सरबराह एडमिरल ब्रेड कोपर चयो आहे त अमरीका इलाक़ाई सलामती ऐं इस्तेहकाम लाइ इतिहादियुनि सां गॾु बीठल आहे।

अमेरिका ईरान विच में गालियन जो बियो तौर शहीद आयतुल्लाह खामनाई जी आखिरी रस्मन बात थींदो। वाशिंगटन में तेहरान जो इत्तफाक कतर तस्दीक करे छॾी। कतरी परदेही वज़ारत मूजिब अमेरिका ईरानी वफदन सां दोहा में मुलाकातूं थियूं आहिनि। ॿिन्ही धुरियनि आयतुल्लाह खामनाई जी आख़िरी रस्मन बाद ॿीहर गालियूं शुरू करण ते इत्तफ़ाक़ कयो आहे।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8569।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।

तव्हांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

अरिड़हीं तरमीम बाद बे वफ़ाक समाजी ख़िदमतन ऐं माशी सरगर्मियुनि में मुलविस आहे जंहिंसां वसीला ज़ाया थी रहिया आहिनि ऐं जवाबदेही जो निज़ाम बि मुतासिर थी रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ एफ बी आर में मौजूद करप्ट आफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जी हिदायत। स्मगलिंग रोकण ते फील्ड मार्शल ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि खे हेठां पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां एफ बी आर जे सीनियर आफिसरनि जी मुलाक़ात। वज़ीर आज़म पारां एफ बी आर गुज़िरियल माली साल दौरान 12,25,957 रुपया टैक्स उगाड़ण ते साराह। शहबाज शरीफ़ चयो त माली साल 2025-2026 में टैक्स जो मुक़ररु टारगेट हासिल करणु वॾी कामयाबी आहे। उमीद आहे त एफ बी आर हलंदड़ माली साल दौरान 15 अरब रुपियनि जो टारगेट हासिल कंदी। एफ बी आर में करप्ट नाहिल ऐं कोताही कंदड़ अमरीका ऐं विच ओभर वारनि मुल्कनि जो अपना हरमुस मां कारोबारी सरगर्मी बिना रंडक जारी रखण लाइ गॾियल कोशिशूं करण ते इतफ़ाक़। अमरीकी सेंट्रल कमांड जी क़यादत में बहरन में 12 मुल्कनि जे फ़ौजी सरबराहनि जो इजलास। अमरीका, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लेबनान, शाम, यूएई ऐं यमन में आला फ़ौजी अमलदारनि जी शिरकत। अमरीकी फ़ौज जे सरबराह एडमिरल ब्रेट कोपर चयो आहे त अमरीका इलाक़ाई सलामती ऐं इस्तेहकाम लाइ इतिहादियुनि सां गॾु बीठल आहे।

अबला हरमुज सेंटकॉम चीना पर ईरान के कंट्रोल में है। ईरानी नायब परदेही वजीर काज़िम गरीबाबादी चयो है तो फौजी इजलास अबला हरमुज की सिक्योरिटी जो ज़ामिन न तो थी सके। अमरीकी मौजूदगी में खत्े में अमन ए इस्तेहकाम कायम थियण मुमकिन है। ईरानी फौज चयो है तो अबला हरमुज में अमरीकी मुदाखलत ते मुंह टोड़ जवाब दिनो वेंदो। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रस्म की शुरुआत सुपाने का थी। तेहरान में सिक्योरिटी सख्त। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ समेत मुख्तलिफ मुल्क आला सतही वफद आखिरी रस्म में शिरकत कदा। ईरानी सदर मसूद पेशकियान आयतुल्लाह खामनाई की शहादत जो सफर खत्म नपद नए बाब की शुरुआत है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।